हर रंग जन राता साध संग गुण गाया सब दुख है खाता नानक सोई जीविया जिन एक पछाता नानक सोई जीविया जिन एक पछाता।

करना। अगम अगोचर साहेबो जियां का परना, हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना। मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना, जो तुद भावै सो भला नानक दास सरना।

पंडित गुणी सूर हम दाते, एह कह है बड़ हम ही, जिस है बुझाए सोई बुझे, बिन बुझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूक है, इन विद्मान कलही है।

पटक बेज महराव रहो जाको तीन लोक विस्तार अलहल हंता भेद शय कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन भेदयो पायो अपंग अशेद।

दुख अंडोह नहीं तेहे ठाव ना तस्वीश खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब।

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो जो उपजाय सो अलाख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

अनल शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान। दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

छोड़ चलै अभिमहनी, काहे एक बिना चितलाइय, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याइय रहाऊ।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्दम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल कृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

हई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे, सच्चे शब्द सुपाखिया। पढ़ पढ़

अर्थ ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

प्रतिशक्षके गुरतुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध।

पांड मुआ फंड पहलिया पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान पंड हो।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

माया चित्र बिचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहा।

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

गुर शब्द हर रमणम मत तत ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

जिन लाग हर लिव तुम्हारी जी जंत सभे ही नाचे नाचह खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाचह जिन गुरमुख शब्द लिव।

कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोय न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए। कहो नान

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा।

पयाण ज्योतिष पावै समरथ सोथिय हिलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखहो एक निमख निमख।

जाए। सतगुर मिले ता निर्मल होवे, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ते आया, सुख दाता दुख विसरिया।

अनन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिस गुरसिख को हो सदा नमस्कारी जो गुर कै पहने गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा।

पंच पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने।

पछात सफल जन्म जग आया हर रसचात सदा मन तृप्तया गुण गावै गुणी अगाह्या कमल प्रगा सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया।

चात्रक जल, जो चात्रक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

रहा जिन हरते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदाता निखोट न कभी जाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

पवित्र है जो नाम हर राते तिनके कर मंदिर महल सराई सब पवित्र है जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो।

जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वड्याई हर अपनी वड्याई भावदी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम ध्याएंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान।

अजहु सहियै दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

आई के छूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जप

हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख।

मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावाओ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग।

अनक जन्म भ्रमथित नहीं पाई, करो सेवा गुरला गौं चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ।

बिन गुर मूड भय है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना

हर हर हर हर भगत दृढ़ा वहो हर हर नाम उमा हाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई, जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाय है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन महथाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई।

कथा हर जस साध संगत सिंह एक मोहत ना एव मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सिंह पाओ ना कीनो नह सतपुरख मनायो तावत कौ ताव है बहु भांति ज्यों तेली बलद परमायो नाम दान इशनान ना

जस उत्तम खट दर्शन गाल है राम। शंकर करोड़ तैतीस आयो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गाव।

मान मिल संत जना जस गायो, मान मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

शर्म धर्म दोए शब खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो, काजिया बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो, मुसलमानिया

लाहे हो सच सब ऊपर हर तनी सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी सच साहेब साचा खेल सब हर तनी।

इसका इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।